जो सात गिरास्त आए मेरा हर हर सोमर से क्यों गुरु मन पार जिसनू दयाल होए मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुर उपदेश सुना तिस गुर सिख गुर

दूसरे पादशाह श्री गुरु अंगद देव जी महाराज दा है। गुरु साहब जी कहंदे ने तिना दरियावां सियों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम। दोस्त कहो जिहा बनाना चाहिए गुरु साहब जी दसदे ने कहंदे ने दोस्ती करनी है

किन्नी शक्ति दा मालिक है जिड़ा मेरे आखे नहीं लगदा जो कि आसन ला के बह गया रिधियां सिद्धियां प्राप्त सन उन रिधियां सिद्धियां दे

जोगी दे लंगर विच प्रसाद छक तेरा बचाव हो जाएगा, नहीं तो तेनू असी जिंदा नहीं छड़ना। पर भाई तिलकू उन्हां दा मन गुरु नाल जुड़े है, ते जिदा मन गुरु नाल जुड़िया होवे एहो जिहियां चीजां लागे नहीं आंदियां। ओ भूत प्रेत बथेरा रौला पांदे ने, भाई तिलकू बुआ खोल लंगर खा नहीं ते तेनू मार देंगे। हुण जिस गुरु दी ओट भाई तिलकू ने लई, ओ गुरु भाई तिलकू दी रखिया कर रहे है। उन्हां भूतां प्रेतां नूं कोई एहो जी चीज पैंदी है जिहड़ी चुक के पिछां सुट दिंदी।

जोगी आप तेरे द्वारे चल के आया है, चल के लंगर छक, मैं तेनू सारी जिंदगी दा स्वर्ग दिया। भाई साहब ने

तेरे गुरु दा तेनु वास्ता बुआ ता खोल। गुरु दा वास्ता सुनिया भाई तुलकु जी उठे, उठ के बुआ खोले। गुरु दी गल ते गुरु दे प्यारे अपनिया जाना वार देंदे, गुरु दे चरणा तू कुर्बान।

तेरा गुरु केड़ा है जिदे चरणा दे बदले तू स्वर्ग दी परवाह नहीं करता, जिदे चरणा दे नाल तू मन जोड़े है ते स्वर्ग नू ठुकरा दिता, उस गुरु दे मैनू भी दर्शन करा मैं भी दर्शन करा। केड़ा ऐसा गुरु है जिदे चरणा नाल तू जुड़ के स्वर्ग दी परवाह नहीं करता। भाई तिलकू जी कहन लगे, मेरे गुरु मेरे नहीं उते सारिया दे सांझे ने, उन्हां दा नाम धन गुरु अर्जन।

नानक तिन सिउ क्या कीचै दोस्ती जे आप भुलाए करतार उन्हां नाल की दोस्ती करनी जिन्हां नूं परमेश्वर ने भी भुला दिता है। इस करके दोस्ती ओहदे नाल करो जिहड़ा

चाली पंताली साल गबरू नौजवान गुरु मेरी उम्र 100 साल तो उत्ते रिधियां सिद्धियां दा मैं मालिक नौजवान गुरु नूं जाके मथा टेकांगा ए नहीं हो सकता मैं वापस चले नाल आए लोगों ने समझाया अज तू अगे आ गए दर्शन करके जा दिल करेगा मथा टेकी दिल करेगा ना टेकी तेनू केड़ा किसी ने धक्के नाल फड़ के मथा

गढ़शंकर तो आ रही है, वो सारी की सारी जोगी समेत तिलकु समेत कनात वे परले पास से

संगता समेत आके बैठ गए। बैठ दिन सहबा ने पूछिया, जोगी जी तुहाडा इस सज्जा

गुरु साहब जी कहते ने गुरु सतगुर बोहल हर नाम का वड पागी सिख गुण सांझ करावे तिना गुरसिखां को हों वारिया जो बहन देया उठ देया हर नाम त्यावे जिड़ा गुरु है ए नाम दा बोल है जेड़े सिख ने प्यारे ने ओ गुरु दे बोल दे कोल आके बहिंदे ने नाम दे बोल दे कोल ते गुरु दे गुणा दी विचार कर दे नाम दे नाल चोरियां

अचानक तूफान आ गया। लोकी सारे डर गए। मलाह नूं कहण लगे, बचण दी कोई उम्मीद है? तूफान बड़ा भयानक है, बेड़ी भी डोलन लग पई। इस तरह लगदा हुण डुबी कि हुण डुबी। मलाह कहण लगा, जे कोई आदमी अपनी बलि देवे तां ही तूफान बंद होवेगा। हुण सारे लोग एक दूसरे वल देखण लग पे कि केड़ा बलि दिंदे। मैं भगवे कपड़े पाए सन।

लगता भी कोई साधु ना एदा कोई अगे होना ना कोई पिछे। जे मर भी गया ता केड़ा किसने रोना है, इन चुक के सुट दे। जद सारे मेरे वाल देखन लग पे ते मैं समझ गया कि इना लोका ने मैनू चुक के जरूर सुट देना। ओही गल हुई, सारे मेरे दुआले हो गए।

संसार से त्यागे ही हूं शरीर से आगे साड़ी रखिया करो। मैं बथेरा रौला पाया पर उन्होंने लोगों ने मैनु चुक के समुद्र दे विच सुट दिता। मैं ता किसी तरह बने लग गया पर मेरा वो कान किसी मच्छी या किसी जंतु ने काट लिया। ओदे विच इक सोने दा मुंदरा भी सी। जदों इन्नी गल जोगी ने कही ता गुरु साहिबां ने कनात दे थल्यों हाथ दूसरे

जोगी वाल मेर की निगाह नाल देखिया रिधियां सिद्धियां तो उत्ते करके गुरसिख बना दिता। भाई तिलकू वाल होए साहब जी, भाई तिलकू नूं फड़ के अपने गल दे नाल ला लिया ते कहन लगे, भाई तिलकू तेरे वर्गे सिखां वास्ते ही तां बाणी कहिंदी है, बिना गुरसिखां को हों वारिया जो बहिंदिआं उठदिआं।

ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਔਰ ਨਾਲ ਰੋਈ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਲੋਕਾਂ ਤੂੰ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੱਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦੇ ਆਉਂਦੇ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪਾਤੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੋ ਗੰਠੜੀ ਦੁਖੀ ਭਰ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੁਖੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੇਫ ਗੰਗਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕੋ ਮੁਨੀ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਂਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਆਖੋ ਸੀ ਬੜਾ ਥਕਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ
इतने तक मेरे बंगले के उत्ते दरबान खड़ोता रहेगा। मेरा हुक्म सी कोई मंगता फकीर इस दरवाजे पे खड़ा ना हो। जो आंदा सी निराश होकर चला गया और कोई महापुरुष आ गए साईं दे प्यार वाले, उन्होंने सदा कीती रब दियां दातां प्राप्त करने वाले हो, रब दे नाते कुछ खाण नूं देंगे भूख लगी महापुरुष रात दिन भजन करने वाले फुरना बन गया शरीर नूं आहार देंगे क्योंकि इसकी रक्षा करनी साडा फर्ज, शरीर तेरी संभाल करनी साडा फर्ज। बाणी च लिखा कट वसे चरनार बिंद रसना जपे गोपाल नानक सो प्रभु सिमरी है तिसकी गोपाल। इस वास्ते भी पालना तेनू विषय विकारा च जाया ना कर, तेनू लड़ाई झगड़िया च वेस्ट ना कर। मनुष्य जन एक कोई शरीर रोज रोज थोड़ा नहीं, किसी महापुरुष ने तो लिखा है शरीर ए तो रब दे मिलन का दरवाजा है, जिदे विचों लंघ के साई नूं मिल। फिर इनू जाया क्यों करी भेड़े कमां च निंदिया चुगी, फिर मिल जाएगा नहीं। दिल दरवाजा रब दा, ओ यार ना इस नूं ढाल टठा औखा बनेगा, फिर मिलेगा किहड़ा होर तां कोई साधन नहीं। मनुष्य जनों प्राप्त करके ही तू भगती कर सकदा है, ते नाम जप के तेनूं नामी मिल सकदा। कहो नानक ते तप ये तो सिद्धांत, भगती तो बगैर उस नामी नूं मिलण वास्ते उहदा नाम ही, ते जपण दा साधन मनुष्य। बाबा जी बचन करदे सन 84 लख जून, मानुष जन्म जून नहीं, ये 84 लख जून का भाष बाण जी लिखा इस धरती में तेरी सिकर, तू तो हुक्मरान है 84 लख जून का, पर ख्याल करी तेन बादशाह बना के भेजे बादशाह वाले काम करी, किधर नीचा वाले काम ना कर लगे, कुतिया बिलिया वाले काम ना कर लगे। इंसान हो के इंसान ना, पर कई लोग ऐसे वेखण इंसान पर कर्म उन्होंने पशुआ करतूत पशु की मानस जा मानस जा। तो इस वास्ते जेड़ा पत्ता डाली नालों टुट गया उन्हें फिर नहीं, ये मनुष्य जनों एक वेरी हथों खुश गया फिर पता नहीं फिर कदों से दिया। ये गोल्डन चांस उस वाहेगुरु ने मिल एदी समाज। एक वेरी भाई संता सिंह जी बाबा जी ने हजूरी राखी सीधी धारणा पढ़ते।

श्री महाराज बिना हर भजन नहीं छुटकारा देख ले विचार कर। बाबा जी कहने लगे ये विचार करने की गुंजाइश है आपको श्री अजय विचार करने की लोड़ है। बाबा जी कहने लगे जेड़ी विचार गुरु नानक ने पहला कर दी है वो आप की करनी है, आप अमल करना है। विचार विचार भी चंगी चीज है पर जेड़ी विचार बापू ने कर दी फिर सिख का फर्ज है उसे अमल कर। संतासियां विचार की लोड़ है भाई संतासी खामोश करो। बाबा जी कहने लगे पढ़ो की

میرے مہاپرش دستم کر کے ادب کرنا سی ستکار کرنا سی کرو دکھا میں گنڈا چوکی سنتا نو مارنا شروع کر چلے جاؤ بڑا مان تو مہاپرش ڈگ پہ اٹھے ہر شامل تک گنگا رام ول ویکھے بچن پیتا بھائی شیش دار تو مالک دی ہے پر جی تینو اس دار کا ہنکار ہے تو مایا نہیں رہ گیا خود کاروبار نہیں مہاپرشاں نے بچن کی سنتا کا بچن تین کال سا تین کال کیوں سچ اس واسطے संतां दी रसना ते वाहिगुरु है। नारद ने पूछा सी भगवान किशन नु महाराज तुहाडा असल ठिकाणा केड़ा मंदिर विच रह गए हो कि किसी होर धर्म स्थान ते तो आवाज आई कि ए नारद प्रभु जी बसाए मैं तो साधु दी रसना ते ना भी कह सुनो रे लोगा संत रसन को बस ही जेड़ा बचन कर देन तीन काल से घाटे पै गए जिस शहर सेठ गंगा राम गंगू बन गया कर्जे वाले ने कोठी चो धक्के मार के बाहर कर दिता धोबी ने कुत्ते तरह ना करता ना कर हार के तुर पिया हाँ इतने मैं बड़ा दुखी सिख ने किया गंगा राम रो न काबर न गुरु भली करेगा गंगा राम कहने लगा किस तरह भली करेगा तेन माया चाहती है ना साहब जी कलयुगी जीवा ने उधार करने वास्ते बावनी साहब का तीर्थ रच रहे हैं वे किस तरह संत सेवा कर रही है फिर दो तरह सेवा हो रही है गंगाराम एक निष्काम सेवा है एक साकाम सेवा साकाम सेवा जे करेगा तो एक अठियानी रोज मिले तो दो बेले का प्रशादा लगे तो जे निष्काम सेवा करे तो पता नहीं तन गुरु अमरदास पातशाह तन की करेगी यू तेरी मत साकाम सेवा कर रही है या निष्काम सोचन कड़ी सेवा साकाम सेवा ना रखिया नहीं मिलेगी जिन्हें लखा गिने उन्होंने वास्ते अठियानी की चलती तो सोचा मना चलो साकाम सेवा कर दे की पता गुरु कृपा कर ही दे सेवा कर तो हो इसको हो प्राप्त असि तो साकाम सेवा करने गुरुद्वारे की मत्थे टेकते पातशाह पुत दे दो माया दे दो कारोबार दुनिया दे दो गुरु दे देंगे पर बाबा जी बचन कर दे सन भागा वाला वो गुरसिख है जो निष्काम सेवा और उसाई नहीं मैं भी गंगा रामा फिर सेवा कर दू फिर लंगर ही चला जाए झूठे भांडे मारने शुरू कर फिर पैरी सास गंगा राम लंगर ही चला गया रात दिन सास संगत झूठे भांडे मारने कदे कदे मन ख्याल आ जाता है मन गुरु नाल कोई बचन ही नहीं है दर्शन ही की थी कद भागा वाला दिन आएगा जो गुरु मेनु दर्शन देवेगा ते अपनी रसना तू कवेगा गंगा राम तेरी सेवा प्रवान है कुछ मंग ले ओ दिन खड़ा पर रात दिन सेवा करी जांदा है इसे वेले मन भी निराशा वाल भी चला जांदा है पर फिर गंगा राम अपने मन नु समझांदा है मन गुरु समर्थ है अंतर्जामी है कि ना पाए सेवा करी जा।
ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਨਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਮਨ

हर पासी रहो लगन फिरो बन माही साक्षी सब साक्षी कमियो दुखदा सुख सैनाही मन कामना तीर्थ जाय बसियो शिव करो ताराए मन की मैल ना उतरे ये लख जतन कराए संत कामनी है वर गैवर बहुत दान करता अनबदर तुम बहु अर्पै मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन जंगा।

सुजला संचौड़ासी ए भी कर कर रहान बड़ी आग जा फिर फिर जल में हर्षो संग न दहान राजलीला राजन की रचना करया हुकुम अपारा सृज सवन चंदन चोला नाक खोर का द्वारा हर तीर्थ साध संगत है सिर करमन से कर्मा कौन आने कृषि पर आप जिसको

साहिब श्री गुरु रामदास जी राग कल्याण भोपाली दियां सुरावलियां विच सर्व दुखां नूं निवारण वाले पार ब्रह्म परमेश्वर प्रति इउं जाचना कर रहे ने।

राग प्रभाती दे इस रंजक स्वरूप विच भगत कबीर जी उस खालक दी नूरानी होंद संबंधी समुच्ची लोकाई नू उपदेश दे रहे ने। लोगा परम ना भूलह भाई, खालक खलक खलक मह खालक, पूर रहे हो सब ठाई।

विभास ते प्रभाती रागां दे सुमेल राग विभास प्रभाती दियां मधुर सुरावलियां विच भगत कबीर जी उपदेश दे रहे ने। प्रगटी जोत मिटिया अंधियारा राम रतन पाया करत बिचारा।

नौवें पातशाह साहेब श्री गुरु तेग बहादुर जी राग जैजावंती दे अंतर्गत विषय विकारां विच ग्रसे नाम विहूणे मन की दशा का बयान कर रहे हैं। रे मन कौन गत होए है तेरी, एह जग मह राम नाम सो तो नहीं सुनह कान, बिखियन स्यो अति लुभान मत नाहिन फेरी।

तत्पर सेवा विच जुड़े रहो। मालिक आपे कृपा करनगे, बख्शिश करनगे। जे तुहाडी आस है साहबां दे दर्शन करन वास्ते तां साहब जरूर दर्शन देण। सेवा करदिआं कुछ दिन लगे, साहबां दा अवतार पुरब नजदीक आ गया, तां सोहना ते मोहना मन विच आस पैदा हो गई कि साहबां दा पुरब नजदीक आ रहा है, फुल तैयार करी पुरब ते फुल भेटा करांगे। ए दोनों जने की आस लाई बैठे हैं, श्रद्धा ते भावना नाल फुल भी तैयार कर रहे हैं, ते नाल नाल विराग विच ए शब्द गायन कर रहे हैं। मन वैराग भया दर्शन देख।

ए पावन पवित्र शब्द आसा महला पहला धन गुरु नानक पातशाह का उच्चारण किया है। जिस शब्द अंदर सतगुरु सानू उपदेश देते हुए एक गल समझा रहे ने, कहते ने हे मनुख हे इंसान जोत वेख जात ना पुछ, क्योंकि साडा संबंध जोत नाल है जात नाल नहीं। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है। जोत वेखांगे ते परमात्मा नाल जुड़ सकांगे, ते जे जात पुछांगे जात वाल वेखांगे जुड़ना ते किते रहे है असी टुट जावांगे, क्योंकि जात तोड़दी है जोत जोड़दी है। दोनों गल्लां दा ख्याल रखना। जोत पुछण करके निकटता आउंदी है, जात पुछण करके मनुख मनुख तो दूर हो जाता है। हुण यह बचन सतगुरु गुरु नानक पातशाह ने आख्या नहीं करके दिखाया, जानो जोत ना पूछो जाती, जोत वेख पाई जात ना पूछ, क्योंकि जात ने हमेशा तोड़िया जोड़िया नहीं, ते जड़ी जोत है वो एक कर देती। हुण सतगुरु उपदेश देंदे हुए समझा रहे ने कुछ गल्लां आपदी चोली पावां।

आप करके दिखाए। सतगुरु आराम कर रहे सन, सतगुरु दे कन्नी एक आवाज पई। वो मिठी मधुर आवाज नूं सुनदे सुनदे सतगुरु उस पासे तुर पए। की वेखदे ने? एक मनुख, एक पुरुष हाथ विच रबाब लई रबाब बजा रहे। उस वजदी रबाब नूं वेख के सतगुरु बड़े खुश ते प्रसन्न होए। कहिंदे ने भला रबाब वजाईंदा, भाई रबाब कमाल वजा रहे। पर जे इस राग विच किते शब्द पा के वजाए इहदा आनंद कुछ होर ही होवे। उस मालक ने तेरे ते कृपा कीती है, तेनू राग दित्ता है, तेनू सुर दित्ती है, लेकिन तेरे कोल शब्द नहीं। इस राग विच शब्द नू पा के गायन करे इहदा आनंद कुछ होर हो। कौन है? सतगुरु पुछ करदे ने, भाई नां की तेरा? कह लगा जी नां दाना। सतगुरु कहिंदे ने तेनू पता है दाना किनू कहिंदे ने? नहीं महाराज मैं नहीं जानना। दाना कहिंदे ने सियाणे नू, जो सियाणा होवे उहनू दाना कह के बुलांदे ने, भी इह बड़ा दाना है। दाना सियाणे नू है कहिंदे ने, पर तू की कर रहे? कहिंदा जी मैं लोकां दी उसत करके अपना पेट पाल रहे, रोटी गुजारे जोगा कुछ कर लेना। सतगुरु कहिंदे ने मेरे नाल आ, मेरे नाल चल। जो राग विच शब्द पा के गाएगा सारियां भुखां दूर हो जाएंगी। सतगुरु जी मैं समाज दे विच एक पिछड़ी जाति विचों हां, छोटी जी जाति विच, मेरा तुहाडा मेल नहीं हो सकता। सतगुरु कहिंदे ने ओह दाने आ, मैं तेरी जोत वेख के तेरे आ लाया, तेरी जात नहीं पुछ रहे तू कौन है। मैं तां केवल जोत दी पहचान कर रहे हैं, वो जोत मैनू तेरे कोल खिंच ले आई है। कहन लगे महाराज तुहाडा साडा मेल नहीं हो सकना। कहन लगे फिर की होए, असी मेल बना लैने। सतगुरु जी ने दाने तो मरदाना कह दिता। कह लगे तू दाना नहीं तू मरदाना है। मरदाना कह लगा सतगुर जाड़ ते उथी रह गई, तुहाडे विच ते मेरे विच जिहड़ी दूरी है, जिहड़ी होमे दी हंकार दी दीवार है, वह तो उथी दी उथे खड़ी है। वह दीवार केड़ी है? एक जात। साहब कहिंदे जात होमे दी दीवार है। जो मनुख दे विच खड़ी हो जाए ना, उहदे अंदर भी जोत नूं नजर नहीं आउण दिंदी, इह दीवार इहो जिही। कहिण लगे दाने तो बनाया है मरदाना, लै इह वी मैं भिन्न भेद मिटा दिंदा, अड तो तू मेरा भाई होए। हुण ते तेरे मेरे विच फर्क नहीं ना रहा, तू मेरा भाई बन गए। ना रख दिता जी भाई मरदाना। गुरु नानक ने अपना भाई बना लिया, तेरी मेरी जात हुण इक हो गई, तेरे ते मेरे विच फर्क काई ना रहा। सतगुर तुहाडे नाल चल पे आ, मेरी जात बलादरी वाले वो मैनू जवाब दे देंगे। कह लगे फिर की होया तू चल मेरे नाल। लो जी भाई मरदाने नू गुरु नानक ने अपने नाल ला लिया। जो भाई मरदाना गुरु नानक नाल तुरे आ ते कुछ गल्ला सतगुरु ने आखी। कह लगे मरदाने साडे ए बचन याद रखने ने, वो केड़े ने? भाई साहब भाई मनी सिंह बंसावली विच ऐसा जिक्र आउंदा। कह लगे तू हुण साडा साथी साडा भाई बन गए, ते मैं संसार विच
इस शब्द नू वंडने तेरे जरिए। आज तो बाद रोमा दी बेदबी नहीं करनी। जी महाराज पिछले राती जागने। जी महाराज आए गए अभ्यागत की सेवा करनी है। तीन गल्लां सतगुरु ने कही लो जी भाई मरदाने ने पल्ले बनने। ख्याल करियो सतगुरु गुरु नानक पातशाह दे नाल भाई मरदाना तुर पे। कह लगे जो राग भी शब्द पा के गावेगा ना वो तेरिया कुला तर जाएंगी। बाकी गुरु नानक ने कुला तार दिती। भाई मरदाना नाम लेवा जेड़ा भी गुरु का कीर्तनिया है। ख्याल करियो कदी भुखा नहीं रे। कहन वाले ने लिखण वालिया ने बयान करने वाले ने बहुत गलत बयान किया है। लो जी उते भुखा प्यासा ते आया रहिंदा सी। कोई गुरु नानक ना रहने वाला भुखा प्यासा रह जाए? बिल्कुल नहीं। हां गुरु नानक का वादा सी मरदाने जिथे भुख लावांगी उथे भुख भी लगेगी, जिथे प्यास लावांगी उथे प्यास भी लगेगी। नाम ही मरदाना जग तारने बहाना सी। देखो जी नाम दा मरदाना जगत दे तारन दा एक बहाना सी। मरदाना कौन सी? सोई मर्द मर्द मरदाना। गल मैं कर रहा जोत दी। वेखो गुरु नानक दी जोत जिन्ने मरदाने दे अंदर जोत नूं पहचाने। एक ऐसा मर्द बनाया, एक ऐसा अपना भाई बनाया जिसनू नाल लैके सारे संसार अंदर इस आवाज नू बुलंद कीता। तो आवाज केड़ी है?

नामदेव भगती करने वास्ते मंदिर विच आ गए। धर्म दे ठेकेदारा ने चुक के बाहर मारे। पंडता ने आखिया तू नीवी जात विच एक शुद्ध ते मंदिर विच किवें आके बह गए। कहिंदे ने मोढ़े ते कमली पाई मंदिर दे पिछवाड़े जाके बह गए। परमात्मा अगे रोस कीता, हे परमात्मा

हे परमात्मा बस एक गल का ख्याल करी मैनू तू ना विसारी मैं ते तेरे अगे बेनती ही कर सकदा रोस कर रहे ने अकाल पुरख नाल हे परमात्मा जे तेरा नाम ही नहीं सी जप सकदा तेरा सिमरन नहीं सी कर सकदा तेरे घर ही नहीं मैं आ सकदा सी मैनू कानू इस जात विच भेजे किसी उची जात विच भेज दें तेरा नाम ते जपदा तेरा सिमरन ते करदा नीवी जात वाले नू नाम जपन का भी हुक्म नहीं ख्याल करो इस समाज की हालत सी इस समाज के अंदर मंदिर विचों कटे हुए नामदेव नू धन गुरु अर्जन साहब ने आवाज मारी आ नामदेव तू मेरे को आ की होया तेनू मंदिर विचों कढ़िया गया मैं तेनू हर मंदिर विच बिठा दिना हाले के जोहरा फिर गया पर उन्हां जात अवमानिया दे मन फिर भी नहीं फिरे उथे दे उथे खलोते हंकारियां निंदकां पिट दे नाम देव मुख लाया हंकारियां वाल जात अवमानिया वाल पिट हो गई नाम देव नूं मुख सामने विखाया परमात्मा ने लेकिन उन्हां दे दिमाग उथे दे उथे खड़े उसे तरह दे उसे तरह ही हन कैसी कमाल दी गल है जी नामदेव हर मंदिर विच उदों भी बैठे सन नामदेव हर मंदिर विच अज भी बैठे हुए है किसी सिख की ताकत कोई आखे कि नामदेव जी तुसी परा हो जाओ मैं गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकना नहीं कोई कह सकता क्योंकि यह मान बख्शे है गुरु अर्जन साहब ने ते गुरु का दिता कोई मान खो नहीं सकता कोई लै नहीं सकता कैसी गल है उस वेले समाज विच ए हालत सी लेकिन धन गुरु अर्जन साहब ने अपने नाल बिठा ले अड़दा मिनिस्टर नाल कुर्सी बर्दाश्त नहीं करता वो कहना मैं ही बस उत्ते होवां मेरे नाल ना कोई बोवे पर धन गुरु अर्जन साहब ने ते अपने नाल कईयां नूं बिठाया एक रूहानी थाल तैयार कीता धन श्री गुरु ग्रंथ साहब दा रूहानी रूह दी खुराक 36 प्रकार का जिदे अंदर भोजन है जिन छा के मनुख तृप्त हो सकता है हालांकि नामदेव ने आवाज केड़ी दिती है

गल राम दे नां दी है पर सतगुरु ने क्यों बुलाया? वो कह लगे मैं तेरी जात नूं आवाज नहीं दित्ती, तेरी जोत नूं बुला दे। जिहड़ी जोत इस गल दी गवाही कर रही है सबे कट राम बोले, रामा बोले, राम बिना को बोले, उस तो बिना कौन बोल सकता है? फिर कहिंदे ने

एक शाहीतारी प्रेमी तख पोछते बैठे, हाथ उच माला पड़ी रह राज दा पाठ पिया कर दे। इस दा लड़का बारों पटकदा पटकदा आया, अपने पिता नू पाठ करदा देखिया तां कोल बैठ गए। पिता ने पाठ कीता, पुत्र ने सुनिया, अरदास कीती, पुत्र ने वो भी सुनी। अरदास तो बाद ए लड़का पुछदा है, पिता जी ए जो तुसी पढ़ रहे सी मैनू सुन के बड़ा आनंद आया, पर ए किस दी कलाम तुसी पढ़दे सी? इस तरह लगदा है जिवें पहला कदी इस लड़के ने पाठ नहीं सुने। वैष्णव साधुआं दे कोल

गुरु दा जा सरवण करदे ते सारे लोग आनंदपुर साहब नूं तुरे जा रहे ने। ए सहजधारी लड़का मन विच सोचदा जांदा है मना, जिस गुरु दी बाणी विच इन्ना आनंद है, उस गुरु दे ते दर्शन कीते आ, मन नूं ठंड पै जाएगी। गुरु साहब ते चौंकड़ा मार के बैठे होणगे, उन्हां दी अखां बंद होणगियां, गुरु साहब दी समाधि लगी होवेगी, मैं जाके बुलावांगा तां वी उन्हां दी समाधि नहीं खुलनी, उन्हां दा दरबार बड़ा वड्डा होवेगा, बड़ी संगत बैठी होवेगी, बड़ी शोभा होवेगी, क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी, जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे, बड़ी संगत बैठी होवेगी, बड़ी शोभा होवेगी, क्योंकि वैष्णव साधुओं की संगत करया करदा सी, जिहड़े समाधियां ला के बहिंदे। और उसे तरह ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बारे सोचदा संगत दे नाल तुरिया जा रहा है। कईयां दिनां दा

सूरज डूब रहे है ये सारा संग आनंदपुर साहब किले के बाहर पहुंचे है। दूसरे पासे धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज शिकार खेड के आए सन। नाल सिखा ने किन्ने ही मग मार मार के उन्हां दियां लत्तां फड़ियां ने ते टौणा लटकियां ने। ओ मग हत्थां विच फड़ी होई ने। संगत ने गुरु साहब नूं देखिया, गुरु साहब ने संगत नूं। गुरु साहब जी भी खड़े हो गए, संगत भी किले दे बाहर ही खड़ी हो गई। सारी संगत ने मत्था टेकिया, पर ए जिहड़ा सहजतारी प्रेमी सी एदे मन विच गुरु साहिबां वास्ते किरणा पैदा हो गई। ए तां सोच के आया सी कि गुरु दी समाधि लगी होवेगी, गुरु साहिब चौंकड़ी मार के बैठे होणगे, पर जदू देखिया कि गुरु साहिब जी तां शिकार खेड के आए ने, नाल सिखां ने मरे होए मग फड़े ने हत्थां दे विच, ता इहदा मन किरणा दे नाल भर गया। भाई संतोख सिंह जी

जिन हित आए जिदे कोल मैं चल के उजैन तू पहुंचिया वा इन्नी दूरों आया पर गुरु का

0: हजारों मगो लंघाए।
1: जिन्हां दे सिखां ने कोस हजारों बहुत सारे मग मार के

झाड़ू फेरिया लंगर विच भांडे मांजे गुरु दियां कथा कहानियां सिखां कोल सुनिया मन भिज गया। एक दिन कलगीधर पातशाह इकले बैठे सन। सहजधारी लड़का गुरु साहबां दे कोल गया 100 रुपया पिता वाला 500 रुपया अपने कोलों गुरु साहबां दे चरणां ते रख के मथा टेकिया। नाले किया पातशाह ਇਹ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲੀ ਕਰੋ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਪਸ ਘਰ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਈ ਇੱਕ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਕੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ सिखा इस कड़े दा अदब रखी जो मंगेगा वो तेनु मिलेगा। ए बख्शिशा लैके खुशी खुशी आनंदपुर साहब तू तुर पिया। बड़ा प्रसन्न है बड़ा खुश है पर जदों आनंदपुर साहब तू बाहर निकलिया ते सारा आनंद गुआच गया। माया वाली बिरती फिर जाग पई कहन लगा मना बहुत माड़ा कीता 600 रुपया रोक के आ गई एकड़ा प्रसाद दिता है जिड़ा पिता घर रोज बनांदा ए सर्वलोह दा कड़ा दिता है नाले वचन दिता है कहंदे ने जो मंगेगा तेनू मिलेगा पर जिस कड़े दी अपनी कीमत 4 आने नहीं इन्हें मेनू 1000 रुपए कितू दे देने। बड़ा उदास हो गया मुंह लटकाए ते तुरदा तुरदा चमकौर साहब जा

सारे दुख दूर हो गए, सुख जड़े सन उन्हां नाल फिर घर भर गए। ते गुरु साहब जी का शब्द है भाई, गुरु का वचन की है, जो आपा गुरु की बाणी पढ़ते गुरु के वचन नूं मन्नांगे, गुरु के वचन की कमाई करांगे, तां साडा जीवन सुखां दे नाल भर जाएगा। जे गुरु के वचन की सार नहीं लवांगे ते फिर भाई दुखी होवांगे।

पोखत हैं जल में फल में पल में कल के कर्म विचारे के निर्जुर न रूप हो फरीदा खालक खलकू में।

परम सत्कार योग सत संग जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़भागियों दूरों दूरों चल के करोगी धंधियां संकोच के शरदा प्रेम भावना लेके जागत जोत सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी के चरणों विच पुजे आके गुरमुख प्यारियां तो गुरबाणी का कीर्तन गुर इतिहास सरवण कीता। जिन्ना समा होर महाराज बख्शदे ने अज इस पंडाल का पंजवा समाप्ति का दीवान है। सारियां संगतां गज बज के बोल के शरदा भावना नाल जिहड़ी संगत बाद विच आ रही है शांति दे नाल गुरु महाराज का अदब मुख रख के जिथे जिथे जगह मिलती है सतगुरां नूं हाजर नाजर समझ के बैठना ते लाहा प्राप्त करना। बहुत वड्डी किरपा होवे उदों सतगुर पातशाह जी किरपा करदे ने नगरां नूं गुरमुख प्यारियां नूं घर विच सेवा ते सिमरन दी दात बख्शदे ने। बाकी दातां जरूरी हन जीवन दा निर्वाह माया गुजरान है बहुत जरूरी ने पर मनुष्य दी समझ ज्ञान इस तल ते रुक गया कि अपनी जरूरत नूं मंजिल समझ बैठे। एक मंजिल हुंदी है एक लोड़ हुंदी है जरूरत। जरूरत तो बिना मंजिल ते पुजिया नहीं जा सकदा पर जे मंजिल ना आई ते लोड़ा व्यर्थ गई। जरूरत ते मंजिल इनू जटकी भाषा विच समझ लो जो कणक बीजी गई है रे बूटे दी जरूरत है पानी बूटे दी जरूरत है गुडाई करनी बूटे दी जरूरत है। ते गुरमुख प्यारियो मंजिल की है झाड़ निकले दाने पैदा हो। हुण दोवां दा संबंध किन्ना है ते गुरमुख प्यारियो सेवा तो बिना खर्च तो बिना बूटे दी जरूरत तो बिना झाड़ नहीं निकलना। पर जे झाड़ ना निकलिया वो रे पानी व्यर्थ गया के आखो सतनाम। झाड़ की है वो भी तुहाडे सामने दी क्रिया है। गुरबाणी ने तो फैसला किया है आ जिहड़ी बाणी पढ़नी है ना नितनेम करना ये क्यों शुरू किया कीर्तन क्यों शुरू किया कथा क्यों शुरू की लो जे तुसी सच गल समझो इन्हां दी लोड़ नहीं सी। ये मजबूरी है मनुख दी समझ लो गुरमत विचों एक सानू अख दती है एक गुरमुख प्यारे ओ कन दता है फिर मत दती है समझण वास्ते। जेड़ा आदमी देख के समझ जावे उनू बोलने दी लोड़े नहीं हुंदी। जेड़े बंदे नू देख के समझ आ जावे आ चीज आ है उनू बोल के दसण दी लोड़ नहीं। जिनू दिखे ना उहदे वास्ते बोलना ही साधन है। अंधा बंदा उनू कहना पऊगा तेरे मूहरे चिक्कड़ है भी पासे हो जा उत्थे बोलने दी लोड़ पई।
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋਏ ਗੱਲਾਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਫਿਰ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਨੀ। ਜੇ ਦਿਖਦਾ ਹੋਵੇ ਦਿਖ ਜਾਵੇ ਮੂਹਰੇ ਚਿੱਕੜ ਹੈ, ਜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੋਵੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦੂਗਾ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਭਾਈ ਗਿੱਲਾ ਮੂਹਰੇ ਕੰਡੇ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਪਾਸੇ, ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਲਓ ਦੇਖ ਵਰਤੂਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਥਾਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਕਰ ਦੇਣੇ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਹਿਲਾਉਣ ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਥ ਕਰ ਦੂ। ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤੇ ਨਾ ਸੁਣੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਵੇਂ ਦਊਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਹੀ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਅਜਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਦਾ ਨੀ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਦੇਖਣਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਇਹ ਬੋਲਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ।